गुलजार साहब, राहुल देव बर्मन। आशा भासले ऑन इजी 96। नीरा फासले, लाटा मंगेशकर।

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, वेलकम फ्रेंड्स टू इजी 96 रेडियो। क्या हाल चाल है आप सबका? हम आपके साथ और आप हमारे साथ होपफुली इस म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे आज ऑन योर स्टेशन संजना विद यू फ्रेंड्स, ब्रिंगिंग यू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ झनकार। Hope everyone is doing great and hope all is well with you and of course with Easy 96 where music is surely in abundance। तो चलिए एक बार फिर हमारे आर्टिस्ट आने वाले हैं, आने वाले क्या हैं, आ चुके हैं। वी कैन काइंड ऑफ फील देयर प्रेजेंस राइट हियर अमंग अस एंड वी आर होपिंग दैट दे आर हियर टू स्टे विद अस फॉर सम टाइम एंड यू नो वी विल ऑफ कोर्स ट्राई टू हिट द कॉर्ड विद देम ईच एंड एवरी वन ऑफ देम फॉर दैट मैटर। सो फ्रेंड्स, म्यूजिक है हमारे साथ तो फिर क्या डर है, हम कहते हैं यहाँ झनकार पर, इजी 96 पर, क्योंकि म्यूजिक के साथ हमें दिखते हैं क्या क्या प्यारे प्यारे से नजारे। जी हाँ, कुछ ऐसे वैसे नहीं, बट ऑल नजाराज दैट वी कैन काइंड ऑफ ट्रैवल थ्रू, काइंड ऑफ यू नो फील दैट, क्या कहते हैं, फ्री टिकट की ट्रैवलिंग होती है। सो इसी बात पे एक नज़ारे वाला गाना हो जाए, क्योंकि सच्ची में म्यूजिक के साथ, गीत संगीत के साथ, आपके साथ झनकार पर मुझे भी क्या क्या नज़ारे दिखते हैं। वेलकम टू झनकार।

जी हाँ, बोला था आपको कि क्या क्या प्यारे प्यारे से नज़ारे दिखेंगे, और दिखते ही हैं विजुअली तो नहीं, लेकिन हमारी इमेजिनेशन में ज़रूर हमें बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे दिखते हैं, और ये नज़ारों के सहारे तो हम जीते हैं, बिकॉज़ अनटिल वी इमेजिन यू नो आर डिज़ायर्स एंड आर विशेज़ डोंट रियली कम ट्रू, बिकॉज़ वी डोंट नो वॉट टू एक्सपेक्ट, वी डोंट नो वॉट टू विश फॉर, एंड वी डोंट नो विच एंगल टू काइंड ऑफ टेक आवर डायरेक्शन. सो डिज़ायर्स, विशेज एंड क्या कहते हैं उनके, इन चीज़ों के लिए, गोल्स के लिए, अदर देन ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क, हमें इमेजिनेशन की बड़ी ज़रूरत है. वैसे वर्क में भी ऑफ कोर्स वी नीड इमेजिनेशन, स्पेशली दोज ऑफ यू हु आर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन. सो फ्रेंड्स, चलिए, म्यूजिक है और आप हैं हमारे साथ. थिंक ऑफ अ सॉन्ग दैट यू वुड लाइक. आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड प्ले आर नेक्स्ट सिलेक्शन, विच इज़ इन द वॉइस ऑफ लता जी. सो चलिए, लता जी को लेकर आते हैं और ये गाना आपके लिए लगाते हैं राइट नाउ.

जी हाँ, वादिया मेरा दामन, ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई एक्चुअली माई सेल्फ हैपन टू लव दिस सिलेक्शन सो वेरी मच एंड लव बोथ दी यू नो किशोरदा नहीं, रफ़ी साहब्स वर्जन एंड लता जीज़ वर्जन. बहुत ही प्यारे गाने हैं दोनों. एंड ये थोड़ा फास्टर है एंड किशोरदा का नहीं. मैं किशोरदा को क्यों याद कर रही हूँ? चलिए कुछ नहीं होता, हमारा पहला गाना आज ही किशोरदा का था, सो नो प्रॉब्लम्स. तो रफी साहब का वर्जन भी बहुत ही प्यारा है. सो फ्रेंड्स, चलिए हेलो हाय करते हैं थोड़े लिसनर्स को जो आ चुके हैं और थोड़े लिसनर्स जो अभी अभी आ रहे हैं और बस कोशिश कर रहे हैं कि हमें लिखेंगे या फोन करेंगे जैसे ही टाइम मिले. तो पहले तो वेलकम टू यू एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी रिटन एंड कॉल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ईमेल्स, योर रिक्वेस्ट, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू देम. सो ग्रीटिंग्स गोइंग आउट टू सतीश जी, उषा जी लिसनिंग टू अस इन लॉन्ग आइलैंड, मोक्षा इज लिसनिंग टू अस इन न्यू जर्सी, सिद्धार्थ वेलकम टू द show listening to us also in Long Island. Greetings also going out to Nita. Nita is joining us from Michigan. Romy is listening in from Long Island. Yogni is joining us from New Jersey. Sharvari, welcome to the show. And to start with, yes, get your cup of coffee because I'm going to do exactly that after I play hit. एंड प्ले अ सॉन्ग फॉर राजेंद्र जी एक्चुअली हु इज लिसनिंग टू अस इन न्यू जर्सी. तो उनके लिए गाना लगाते हैं और हेलो बोलते हैं मिस्टर देव को जो सुन रहे हैं हमें मुंबई में, एंड जावेद साहब को जो हमें इंडियाना में नहीं बट अटलांटा में सुन रहे हैं. सो थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एज वेल. वर्षा इज लिसनिंग टू अस इन फ्लोरिडा. सो राजेंद्र जी, लेट मी गो अहेड, प्ले अ सिलेक्शन फॉर यू. एंड ये जो गाना है जिद्दी फिल्म से लिया गया है, 1964 की फिल्म है, रफी साहब की आवाज है, हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स हैं, एंड हियर इज द सिलेक्शन दैट आई हैव नॉट प्लेड इन अ वाइल. सो थैंक्स सो मच, सो वेरी मच फॉर रिक्वेस्टिंग इट.

0: बोलो बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो हे बोलो हे बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो
1: जी हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, कुछ तो बोलो बोलो बोलो। ये बड़ा क्यूट सा गाना है एंड आई लव द वे आई रफ़ी साहब हैज़ संग दिस लवली सिलेक्शन। देर समथिंग वेरी स्वीट अबाउट इट एंड आई एम ग्लैड दैट टुडे ही रिक्वेस्टेड दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सॉन्ग। एंड फ्रेंड्स, लेट्स से हाई हमारी प्यारी सी प्रतिमा। थैंक्स प्रतिमा फॉर योर ईमेल एंड थैंक्स फॉर द लवली रिक्वेस्ट। आई विल श्योरली ट्राई माय बेस्ट टू प्ले इट फॉर यू। ऑल्सो लेट्स से हाई टू मंगला जी। मंगला जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना। शुक्रिया एंड थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ग्रीटिंग्स गोइंग आउट टू फातिमा जी। फातिमा जी भी हमें सुन रही हैं, शी इज लिसनिंग टू अस इन एल्मस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू। सो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं। आज बड़ी मीठी मीठी रिक्वेस्ट आ रही हैं, नॉट दैट वैसे नहीं आती हैं, बट या समटाइम्स आई थिंक यू नो वी ऑलवेज हैव बेटर डेज, गुड डेज। सो आई थिंक टुडे इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज बिकॉज लॉट ऑफ यू आर सेंडिंग सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। सो उसके लिए थैंक यू। सो चलिए लेट्स, मैं किसी को भूल रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। पूनम जी, आपको मैंने अगर हेलो नहीं बोला तो माई अपॉलॉजीज, लेट मी गो अहेड एंड से दैट राइट नाउ। एंड आपको ग्रीटिंग्स अगर आप अभी अभी आई हैं। वैसे तो आपका रेडियो फुल ब्लास्ट एवरी डे चलता है एंड यू नो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको भी खुश रखें, क्योंकि वेरी रेयरली डू यू रिक्वेस्ट अ सिलेक्शन। सो थैंक्स सो मच, वेन एवर यू डू इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। वेल फ्रेंड्स, हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट रिक्वेस्ट विच इज एक्चुअली गोइंग आउट टू पूनम जी। एंड टुडे शी हैज एक्चुअली मेड अ रिक्वेस्ट, वन ऑफ हर फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म होली आई रे। मुकेश साहब की आवाज में इस गाने के भी दो वर्जन हैं, एक्चुअली लता जी एंड मुकेश साहब का वर्जन है। वील प्ले मुकेश जी वर्जन एंड इट्स गोइंग आउट टू पूनम जी।

I have a feeling that Holy Eye Ray was the film which was a debut film for Vinod Khanna, if I'm not mistaken. याद नहीं मुझे, but मेरे ख्याल से. चलिए फ्रेंड्स, होली आई रे का ये गाना जा रहा था पूनम जी के लिए. पूनम जी हमें सुनती हैं ऑफ कोर्स इन न्यू जर्सी. अगर आप अभी अभी आए हैं, यू आर लिसनिंग टू संजना ऑन झनकार, ब्रिंगिंग यू ऑफ कोर्स प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस, बिकॉज द सॉन्ग्स आर ऑफ योर चॉइस. एंड हमारी योगनी कहती है दैट दिस इज ऑल्सो माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग दैट यू जस्ट प्लेड. जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ दिल खुश हो जाता है. वेल, यही हमें चाहिए कि दिल आपका खुश होए और आपके चेहरे पे एक अच्छी सी प्यारी सी बड़ी सैटिस्फाइंग सी मुस्कुराहट आए. एंड दैट्स व्हाट आई इमेजिन. वी वर टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन अर्लियर एंड दैट्स डेफिनेटली समथिंग दैट इज माय गोल एवरी डे ऑन झनकार, टू कीप एवरीवन हैप्पी. इट डजंट हैपन एवरी डे, इट डजंट हैपन आई थिंक एनी डे, बट यस आई कैन डेफिनेटली से इट डज हैपन टू सम एवरी डे. तो चलिए इसी बात पे केसी जी को हेलो बोलते हैं. सुन रहे हैं हमें ऑफ कोर्स इन नॉर्थ कैरोलिना. रजनी भी ज्वाइन कर रही है. रजनी ने पहला गाना तो बिल्कुल ठीक दिया है, दूसरे गाने पे आज बड़ी नई डायरेक्शन में चली गई है, नई रफ्तार में चली गई है. आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट नेवरदलेस द फर्स्ट सिलेक्शन विल श्योरली रजनी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्ले इट. Kitty is also joining us, friends. Greetings going out to her from Toronto, Canada. She joins us. So, Kitty, thanks so much for tuning in. Our next song, friends, goes let's go to Florida. कहते हैं सनी स्काइज फ्लोरिडा बड़े अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं. और प्रतिमा हमें वहां सुन रही हैं और उन्होंने हमें गाना दिया है from the film रात और दिन. सो शी वॉन्ट्स टू हियर लता जी's वर्जन. लेट्स प्ले इट. आज ऐसे लग रहा है एक गीत दो आवाज. And this is just happening as a coincidence. No intentions at all for me to do that. So hence, you know, just happening that way. So theme ke andar theme, show ke andar theme mein theme. Aise lag raha hai. To chaliye Lata ji ki awaaz and our next song going out to Pratima.

रात और दिन का ये प्यारा सा गाना प्रतिमा के लिए जा रहा था। फ्रेंड्स सुन रही हैं प्रतिमा हमें ऑल द वे इन फ्लोरिडा, एंड प्रतिमा एक्चुअली यू नो आई लव बोथ द वर्जन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, मुकेश साहब एंड लता जी, एंड देर आर अदर वंडरफुल सिलेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर साउंड ट्रैक। रात और दिन, इफ आई रिमेम्बर, आज मैं गलत चीजें बोल रही हूँ, बट नेवरदलेस लेट मी टेक द रिस्क अगेन। आई थिंक नरगिस जी की ये लास्ट फिल्म थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड दिस इज ऑफकोर्स रात और दिन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर केसी फॉर करेक्टिंग मी। आई हैड मेंशन कि होली आई रे वॉज विनोद खन्नाज डेब्यू फिल्म, बट इट वॉज मन का मीत, बट वन थिंग आई वॉज राइट अबाउट मिस्टर केसी, हमारी जो सी डी है उसमें होली आई रे एंड मन का मीत साथ साथ है। सो सी डी करेक्ट थी, बस आई काइंड ऑफ मिक्सड अप जम्बल्ड अप द नेम्स ऑफ द फिल्म, बट थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। इट्स यू नो वी आर कॉन्फिडेंट बिकॉज वी नो दैट आर लिसनर्स नो सो मच मोर, एंड इट ऑलवेज यू नो वी ऑलवेज से दैट वी लर्न सो मच फ्रॉम यू। हर रोज कुछ ना कुछ हम जरूर आप लोगों से लर्न करते हैं, तो अच्छा लगता है, एंड आप लोग हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट यू नो म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक सिंगर्स, you know different artists, of course where music is concerned, आप हमें knowledge देते हैं, share करते हैं हमारे साथ, and that's what makes us you know so confident, so thank you so very much। तो चलिए इसी बात पे एक और गाना हो जाए before I take the ad break and before I announce what are we going to do today। Our next selection friends is going out to Kitty and she has requested this song from बूंद जो बन गए मोती। तो चलिए सुनते हैं ये गाना साथ में, राइट नाउ गोइंग आउट टू किटी।

0: जी हाँ, मैंने भी प्यार किया और आपने भी प्यार किया। प्यार कितना डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्यार होते हैं, एक ही तरह का प्यार नहीं होता। सो प्यार के बिना जिंदगी डेफिनेटली टोटली इनकम्प्लीट। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की थीम अनाउंस करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, एंड देन व्हेन वी कम बैक वी विल स्टार्ट अनदर सेगमेंट, जनरल सेगमेंट ऑफ योर चॉइस। हमारी जो नेक्स्ट थीम है वो आई है ऑल द वे फ्रॉम इंडियाना, वेयर शर्वरी लिसन्स टू अस, एंड शर्वरी सेड वन ऑफ द प्लेजर्स एटलीस्ट बैक होम व्हाट वी यूज टू गेट इज फ्रेंड्स स्विंगिंग द स्विंग। जी हाँ, झूला झूलना हमें बड़ा अच्छा लगता है समर टाइम पे। तो हम आज हमारी प्यारी सी शर्वरी की थीम करते हैं, सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन द झूला और द पालना, और सॉन्ग्स विजुअली दिखे, झूला दिखे या पालना दिखे, या वर्ड्स में हो झूला या पालना, एंड ऑल्सो इसके साथ टू मेक थिंग्स लिटिल बिट यू नो ठंडा ठंडा, स्विंग एंड वॉटरफॉल डेफिनेटली गो हैंड इन हैंड। तो कोई भी झरना अगर दिखे आपको, तो आप या फॉर दैट मैटर यू नो वर्डिंग्स में हो झरना, दैट्स परफेक्टली फाइन एज वेल। सो वी आर गोइंग टू डू टूडे अ शो विच इज ऑन द झूला और ऑन द वॉटरफॉल। सो एनी सिलेक्शन विच हैज अ झूला और वॉटरफॉल, फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू प्ले इट फॉर यू। वी हैव डन दिस इन द पास्ट, बट इट्स ऑलवेज ग्रेट टू रीविजिट दीज थीम्स एज यू नो time goes by, and then you kind of whenever you do a theme when you repeat it even usually क्या होता है कि different गाने सुनने को मिलते हैं that we have not covered in the previous ones. So looking forward to that. So any selection that has a swing, a jhula, you know, a palna, or for that matter a waterfall, झरना, इन द विजुअल्स और इन द लिरिक्स, वील बी मोर देन हैप्पी टू प्ले इट फॉर यू। आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड यस आई विल बी राइट बैक।
1: इजी लिसनिंग, हैप्पी मोमेंट्स, द जॉय ऑफ इजी 96।
2: Are you looking for senior care for your mom or dad but don't know where to start? Hi, I'm Jen London with The Place for Mom. Nobody knows your parent or loved one better than you, and nobody knows senior living better than the experts at A Place for Mom. They've helped thousands of families find the right place for their mom or dad.
3: I was so glad that I called A Place for Mom. My advisor really listened and was truly my partner in finding senior care for my dad. She went out of her way to get to know him as a person and was always there whenever I had a question.
2: The senior living advisors at A Place for Mom partner with thousands of families every month, listening and offering local knowledge and advice to help find the best senior living communities across the country. And it's a free service. Here's the number.
4: Call A Place for Mom at 1-800-471-5173.
2: There's a place for answers. A Place for Mom. Call today.
4: Call A Place for Mom at 1-800-471-5173. That's 1-800-471-5173.

प्रिंस गाना जा रहा था स्पेशली फॉर जावेद साहब जो सुन रहे हैं हमें इन अटलांटा जॉर्जिया। आकाश फिल्म से था ये गाना। एंड चलते हैं थोड़ा सा स्विच करते हैं मूड को एंड थोड़ा सा पेपी नंबर हो जाए अब गंगा की लहरें फिल्म से। फ्रेंड्स गाना ये द टाइटल ट्रैक जो है लता जी एंड किशोरदा ने गाया है एंड ये गाना आज टीना जी ने रिक्वेस्ट किया है। सो लेट मी गो अहेड एंड चेंज द मूड हियर एंड ब्रिंग यू दिस वंडरफुल सिलेक्शन राइट नाउ। And yes, it's definitely a song that will inspire you today to request a selection for our theme program on the swings and yes, on the waterfall.

जी हाँ, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें, ये प्यारा सा गाना शीला जी को बहुत पसंद आया। सो शीला जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल एज वेल। एंड ये गाना जा रहा था फ्रेंड्स फॉर टीना जी। टीना जी हमें सुन रही हैं इन न्यू जर्सी, और अभी हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं सिर्फ हमारे थीम प्रोग्राम के लिए, विच इज ऑल अबाउट सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड विद अ स्विंग और लाइक क्या कहते हैं वाटरफॉल इन माइंड। एंड चाहे विजुअली आपको दिख रहा हो एक स्विंग या वाटरफॉल, इट कुड बी आइदर ऑफ देम, या गाने में झरना हो या पालना हो या झूला हो, दैट्स फाइन एज वेल। थैंक्स टू शर्वरी वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू दिस नेक्स्ट थीम फॉर टुडे। बट अभी के लिए हमारा जनरल सेगमेंट अभी भी ऑन ही है, और हम नेक्स्ट गाना भेजना चाहते हैं फातिमा जी को। फातिमा जी, देयर इज आई एम गोना प्ले दिस सिलेक्शन फॉर यू, एंड द अदर चॉइस दैट यू हैड गिवन मी फ्रॉम हाउस नंबर 44 एक्चुअली गोज वेरी वेल विद आवर प्रोग्राम, आवर थीम प्रोग्राम टुडे, सो आई विल प्ले इट फॉर यू ड्यूरिंग दैट टाइम। बट राइट नाउ इट इज लता जी फॉर यू फ्रॉम द फिल्म अनाड़ी।

वेल अनाड़ी फिल्म का मैजिक है फ्रेंड्स, और नूतन जी ऑफ कोर्स प्रेजेंट ऑन स्क्रीन. दिस वंडरफुल सॉन्ग वाज गोइंग आउट स्पेशली फॉर फातिमा जी. एंड फातिमा जी, आपका जो दूसरा ऑप्शन है हाउस नंबर 44 का, हम उसको चलाएंगे ड्यूरिंग आवर थीम प्रोग्राम. अनलेस यू कम अप विद सम अदर रिक्वेस्ट, दैट्स परफेक्टली फाइन एज वेल. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू वर्षाज रिक्वेस्ट. वर्षा इज लिसनिंग टू अस इन फ्लोरिडा एंड आई वुड लाइक टू प्ले आवर नेक्स्ट सिलेक्शन फॉर हर. एंड also I would like to say hi to Joan and Mr. Prasad. Joan is listening to us in the Bronx and Mr. Prasad in Mount Vernon. So here is our next selection friends, going out to Varsha. कहीं जा रही हैं ये, लगता तो ऐसा ही है. कहाँ जा रही हैं? Well, let's find out.

Love this song so very much. Thanks so much, Varsha, for thinking of it. A beautiful duet in the voices of Lata ji and Rafi saab. Friends, last two songs for today. I'm going to make a little switch here, going a little bit ahead in time. Aaj humne सिर्फ आई थिंक 60s एंड 50s के गाने लगाए हैं, तो चलिए लेट्स मूव लिटिल बिट अहेड इन टाइम एंड प्ले आवर नेक्स्ट सिलेक्शन व्हिच इज गोइंग आउट टू आवर वेरी ओन हमारी प्यारी सी रजनी. रजनी के लिए ये गाना है. एंड अगर कोमल सुन रही है, कोमल को भी ये गाना बहुत पसंद है. इनफैक्ट व्हेनेवर आई थिंक हियर दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन आई थिंक ऑफ कोमल बिकॉज आई थिंक शी हैज रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग मेनी मेनी टाइम्स एज वेल. बट टुडे इट इज गोइंग आउट टू आवर वेरी ओन यस रजनी लिसनिंग टू अस इन मिजोरी. एंड हियर इज द सिलेक्शन दैट शी हैज चोजन फ्रॉम द फिल्म इम्तिहान.

जी हाँ, रोज शाम आती थी, रोज सुबह आती थी, दोपहर भी आती थी और रात भी आती थी, बट कहीं रातें, कहीं शामें, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, सबके लिए डिफरेंट होती हैं एंड कईयों के लिए खास हो जाती हैं कभी ना कभी। एंड हम उम्मीद रखते हैं कि आज किसी ना किसी के लिए कोई टाइम ऑफ द डे खास ही रहे। गाना बहुत अच्छा था, इम्तिहान फिल्म, एंड वक्त आ गया है लास्ट गाने को लगाने का फ्रेंड्स, और ये है हमारा जनरल सेगमेंट का लास्ट गाना, गोइंग आउट टू नीता। हियर आफ्टर वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू एन एड ब्रेक एंड देन आवर थीम प्रोग्राम विच थैंक्स टू शर्वरी वी आर डूइंग टूडे। इट्स ऑल अबाउट द झूला, इट्स ऑल अबाउट द झरना टूडे, स्विंग्स एंड वाटरफॉल्स राइट हियर ऑन इजी 96। फॉर नाउ फ्रॉम द फिल्म दोस्ताना, गोइंग आउट टू नीता।

0: दोस्ताना फिल्म आशा जी एन किशोरदा की आवाज़, और जी हाँ, दिल लगी ने दी आवाज़, मैं तो कहती हूँ। तो चलिए इसी बात पे एक एड ब्रेक ले लेते हैं फ्रेंड्स, और हमारा ये दोस्ताना जारी रखते हैं विद म्यूजिक ऑफ कोर्स ऑन इजी 96। व्हेन वी रिटर्न आफ्टर दिस एड ब्रेक, इट विल बी ऑल अबाउट द थीम प्रोग्राम विच इज ऑल अबाउट द स्विंग्स एंड ऑल अबाउट द वाटरफॉल्स। आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड विल बी बैक।
1: You're listening to Easy 96.
2: What are you going to do with your old car? You can try selling it, you could junk it, or you can donate it to Heritage for the Blind. Your car will be towed away for free, and your donation is tax deductible. Just call 1-800-639-8620. Heritage for the Blind accepts cars, vans, trucks, and boats. It doesn't matter if your vehicle runs or not, it'll be towed away for free, and you'll be supporting those that need help. Heritage for the Blind is a non-profit organization that helps the visually impaired live fuller lives. Call right now to donate your car. And as a special thank you for calling, you'll receive a free 3-day vacation voucher to many exciting locations. Call Heritage for the Blind right now. Call 1-800-639-8620. Donating is easy, and your vehicle is towed away for free. Plus, you'll get a free vacation voucher. Call now, 1-800-639-8620. That's 1-800-639-8620.
0: And I'm back with you friends. Namaste, Satriyakal, Salam. Ji haan, wapis hain aapke saath hum right here on Jhankar. Sanjana with you friends. And of course, starting our theme program for today, which is all about... जी हाँ, झूला, स्विंग एंड झरना, वाटरफॉल। सो एनी सॉन्ग, एज लॉन्ग एज वन ऑफ देम इज विजुअली ऑन स्क्रीन और इन द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। एंड यस, थैंक्स टू शर्वरी, वी आर डूइंग दिस थीम टुडे।

तो चलिए हमारा जो पहला गाना है, बिफोर आई प्ले दैट लेट्स से हाई टू कला जी एंड विनोद जी हु आर जॉइनिंग अस फ्रॉम टोरंटो कनाडा. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑल अबाउट द स्विंग्स एंड यस ऑल अबाउट द झूला. द झूला और वॉटरफॉल, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे. तो चलिए पहला गाना हमारा जा रहा है किटी के लिए एंड ऑफकोर्स शी हैज given us a song which is most appropriate, like many of you gave this as an option. Gana hi kuch aisa hai ki it is a must play for today's program from the film Jurmana. So Lata ji giving us a start for today, the theme program which is all about Jhula, all about the waterfall. First selection going out to Kitty.

सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत गाना, ऑफ कोर्स जुर्माना फिल्म का, हमेशा एक ऐसा गाना है व्हेन वी थिंक अबाउट झूला, वी थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ थीम, इट श्योरली ऑलवेज कम्स टू माइंड द फर्स्ट सिलेक्शन. एंड टुडे थैंक्स टू किटी, दिस सिलेक्शन ऑफ कोर्स गेव अस अ स्टार्ट, सो इसके लिए थैंक्स. और साथ में चलिए रोजी जी को हेलो बोलते हैं. रोजी जी हमें सुन रही है ऑफ कोर्स ऑल द वे इन डेनवर, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रोजी जी. एंड आज आपका जो फेवरेट गाना है वो भी चलेगा, क्योंकि वो हमारी थीम के साथ बिल्कुल फिट होता है. एंड आई एम गोना ऑफ कोर्स डेफिनेटली थिंक अबाउट यू एंड प्ले दैट सिलेक्शन फॉर यू एज वेल. सो फ्रेंड्स, लेट्स गो ऑन, मूव ऑन टू आर नेक्स्ट रिक्वेस्ट. दिस वन इज गोइंग आउट टू वर्षा. वर्षा इज लिसनिंग टू अस इन फ्लोरिडा एंड शी हैज रिक्वेस्टेड द सॉन्ग विच इज वेरी पॉपुलर फॉर टुडेज थीम एंड इट इज टेकन फ्रॉम द फिल्म हाथी मेरे साथी. तो चलिए लगाते हैं ये नेक्स्ट गाना, जा रहा है हमारी प्यारी सी वर्षा के लिए.

सो जी हाँ, सुन जा ठंडी हवा। और आज हम भी आपको कह रहे हैं कि आप हमें भी सुनिए। हम आपको पूछ रहे हैं कि हमें बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद है और जो जिस गाने में विजुअली या फॉर दैट मैटर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग आपको स्विंग दिख रहा है या फॉर दैट मैटर वॉटरफॉल दिख रही है। एंड यू नो देर आर सो मेनी सिलेक्शंस दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ टूडेज प्रोग्राम एंड आई एम प्रीटी श्योर that you'll come up with some great ones, friends. तो चलिए एक quiz हो जाए इसी बात पे। Language, जी हाँ, there are no barriers to it and language, especially जो music की language होती है, वो तो खुद ब खुद flow करती है just like a waterfall. But language is perhaps the most important function of the human body, I think. And it just allows us, of course, to communicate, you know, and we can allow, you know, the language to kind of, you know, कोई भी लैंग्वेज हो फॉर दैट मैटर, समटाइम्स इट हैज क्या कहते हैं, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ परहैप्स ग्रास्प द इमोशन। जैसे हम म्यूजिक के लिए बोलते हैं कि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, कोई भी गाना किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द मेलोडी इज काइंड ऑफ यू नो यू लाइक द मेलोडी, यू लाइक द कॉम्पोजिशन, यू कैन गेट द फील ऑफ इट एंड यू कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि अच्छा ये किस इमोशन में गाना गाया होगा। सो language definitely is very important for all of us, and hence keeping that in mind, let me find out from you which is the most widely spoken language in the world. That is your question for today, friends. Which is the most widely spoken language in the world? That's the question. Think about it and give me your answer. I am going to play our next selection, which is going out to Yasmin, who listens to us in New Jersey, in Linden, New Jersey, and taken from the film Aradhana. तो चलिए swinging motion में swing करके आते हैं इस प्यारे गाने के साथ right now.

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: जी हाँ, हमको भी आपसे प्यार है, हम यही तो कह रहे हैं। बहुत ही प्यारा गाना था, थैंक यू सो मच फॉर दिस सिलेक्शन। और फ्रेंड्स, अब बारी है दूसरे गाने की, बट बिफोर आई प्ले दैट सॉन्ग, लेट मी आस्क यू अगेन, यस वी आर हैविंग अ क्विज राइट नाउ एंड इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज, नॉट द लैंग्वेज जो हम सब समझते हैं अभी, हाँ इजी 96 पर, म्यूजिक की लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दैट्स द क्वेश्चन, गो अहेड गिव अस द आंसर, इन द मीन टाइम डोंट फॉरगेट टू गिव अस द ऑफ कोर्स request as well, which is all about swings and waterfalls. Right now, I would like to send out, by the way, ये आराधना का गाना जा रहा था हमारी प्यारी सी किसके लिए, हमारी प्यारी सी यास्मिन के लिए जो सुनती हैं हमें इन लिंडन न्यू जर्सी, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। अब चलते हैं टुवर्ड्स अनदर सिलेक्शन विच इज आल्सो एक्चुअली इन द वॉइसेस ऑफ लता जी एंड रफी साहब, बहुत ही स्वीट गाना है एंड आई हैपन टू एक्चुअली लव दिस पर्टिकुलर सॉन्ग एंड आई वुड लाइक टू थैंक टीना जी फॉर इट, लता जी एंड रफी साहब की आवाज में दिस लवली सॉन्ग फ्रेंड्स गोइंग आउट टू हर राइट नाउ एंड बिफोर आई एक्चुअली प्ले दिस सिलेक्शन लेट मी से हाई टू सपना हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कैंसस, ऑल्सो संगीता जी लिसनिंग टू अस इन लॉन्ग आइलैंड एंड ग्रीटिंग्स ऑल्सो गोइंग आउट टू अंजलि, अंजलि सुन रही है हमें न्यूयॉर्क में, सो लेट्स गो अहेड प्ले द सिलेक्शन लता जी एंड रफी साहब की आवाज में।

0: वाह, द ब्यूटी ऑफ दीज यस्टरडे मेलोडीज फ्रेंड्स ये होती है कि ये कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको एवरग्रीन गाने इनको कहते हैं और ये कहलाते हैं, क्योंकि जब भी ये गाने सुनो उतने ही म्यूजिकल, इतने ही मेलोडियस साउंड करते हैं। सो गाना बहुत प्यारा था साजन फिल्म का, काफी दिनों के बाद मैंने भी सुना। सो थैंक यू सो वेरी मच टीना जी फॉर दिस लवली चॉइस। एंड यस फ्रेंड्स, राइट नाउ द क्विज इन एक्शन इज दैट हमें बताइए कि जो लैंग्वेज है विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दैट इज द क्वेश्चन। यू कैन टेक अ ट्राई एट इट, इफ यू नो इट देन शेयर इट विद अस। विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सो दैट इज द क्वेश्चन। एंड आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी बैक, वी विल कंटिन्यू विद आवर प्रोग्राम ऑन स्विंग्स एंड वाटरफॉल्स राइट आफ्टर दिस शॉर्ट एड ब्रेक।
1: Easy listening, happy moments, the joy of Easy 96.
2: Are you looking for senior care for your mom or dad but don't know where to start? Hi, I'm Jen London with The Place for Mom. Nobody knows your parent or loved one better than you, and nobody knows senior living better than the experts at A Place for Mom. They've helped thousands of families find the right place for their mom or dad.
3: I was so glad that I called A Place for Mom. My advisor really listened and was truly my partner in finding senior care for my dad. She went out of her way to get to know him as a person and was always there whenever I had a question.
2: The senior living advisors at A Place for Mom partner with thousands of families every month, listening and offering local knowledge and advice to help find the best senior living communities across the country. And it's a free service. Here's the number.
4: Call A Place for Mom at 1-800-471-5173.
2: There's a place for answers, A Place for Mom. Call today.
4: Call A Place for Mom at 1-800-471-5173. That's 1-800-471-5173.
0: Welcome once again friends to Easy 96 Radio and aap sun rahe hain Sanjana on Jhankar aur hum aapke liye lekar aa rahe hain ek pyara sa theme program thanks to Sharvari in Indiana. He said why not do a program on the swings and we've just added the element of the waterfall as well to it. So chahe waterfalls ho ya for that matter swings ho, visually ya in the song's lyric, चलिए लास्ट चांस आप सबके लिए। अगर आपको आंसर पता है बताइए हमें कि सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है दुनिया में, विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बिकॉज आफ्टर आवर नेक्स्ट सिलेक्शन आई विल बी गिविंग यू द आंसर फ्रेंड्स। सो टेक अ ट्राई इफ यू वॉन्ट टू, राइट नाउ इज द टाइम। आवर नेक्स्ट सिलेक्शन मंगला जी आई वुड लाइक टू सेंड आउट टू यू फ्रॉम द फिल्म हीरो, a beautiful selection which surely is very appropriate for today's program. I'm pretty sure everyone will enjoy this particular song, a favorite among all listeners. So chaliye shuru karte hain with this selection.

सो जी हाँ, हीरो फिल्म का गाना जा रहा था हमारी हीरोइन के लिए. दैट इज आवर वेरी ओन मंगला जी इन नॉर्थ कैरोलिना. एंड थैंक्स मंगला जी वंस अगेन. बहुत ही क्या कहते हैं, सुरीला गाना था और आपके लिए था. 1983 की फिल्म हीरो गॉट अस दिस सिलेक्शन. एंड यस फ्रेंड्स, बात हो रही है लैंग्वेज की. एंड आई वुड लाइक टू थैंक शर्वरी इन इंडियाना, रेखा इन ओहायो, टीना जी इन न्यू जर्सी, प्रकाश लिसनिंग टू अस, वेलकम टू द शो, लिसनिंग टू अस इन टोरंटो कैनेडा, सपना इन कैंसस, फातिमा जी इन एलमस्ट, एंड सुरभि who joins us from Jersey to at least they tried to answer the question and all of you actually got it right. Well friends, the question was which is the most widely spoken language in the world, and usually the top answer that would come to our mind is English. But actually, it is Chinese. That is the answer, Mandarin. And that is the correct answer, actually. And it surprises that it comes as a surprise. The most widely spoken language on the planet, Mandarin, is the most spoken language, beating the second place, English, by 2-to-1 ratio. And guess so who is on the third place? That is of course Hindi, Hindustani, which is spoken by of course most of us. And so third place is Hindustani, fourth place is Spanish, fifth is Russian, sixth is Arabic, seventh is Bengali, eighth is Portuguese, and ninth is Malay, Indonesian, and at number 10 is French. So this goes, I guess, gives you a little insight to the languages and their popularity. So of course, the very first language most widely spoken is Chinese, Mandarin. So thanks so much for all those who answered this question. So चलिए और trivia आपके लिए हम लेकर आएंगे, but अभी के लिए next गाना लगाते हैं जो हम भेजना चाहते हैं रजनी को. रजनी, राम तेरी गंगा मैली फिल्म से आपके लिए एक बहुत ही प्यारा गाना. Here it is, लता जी एंड सुरेश वाडकर जी की आवाज में.

कहते हैं प्यार से जिंदगी कट जाती है, क्योंकि जब प्यार आपको मिलता है यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू फील गुड अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव इन लाइफ, एंड हेंस यू नो इट हैज अ चेंज रिएक्शन ऑल टुगेदर. सो हेंस इट इज सो राइट द ब्यूटिफुल लिरिक्स ऑफ रविंद्र जैन एंड म्यूजिक ऑफ रविंद्र जैन, राम तेरी गंगा मैली. फ्रेंड्स, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग गोइंग आउट टू आवर वेरी ओन रजनी. तो चलिए मनोकामना फिल्म की तरफ चलते हैं, जो सिद्धार्थ ने हमें गाना दिया है उसकी तरफ चलते हैं. एंड आरती मुखर्जी का ये गाना है जो इन्होंने हमें दिया है. सो आई विल प्ले दैट नेक्स्ट, द म्यूजिक ऑफ नन अदर देन बप्पी लहरी. एंड बप्पी लहरी ऑलवेज गिव्स अस सरप्राइजेस, सो लेट्स सी व्हाट सिद्धार्थ हैज कम अप विद राइट नाउ. आरती मुखर्जी इज वॉइस, लवली वॉइस, एंड हियर इज योर सॉन्ग सिद्धार्थ.

हमें आपसे पूछना पड़ेगा सिद्धार्थ कि आपको क्या हुआ। मनोकामना फिल्म से ये गाना था फ्रेंड्स, बप्पी लहरीज म्यूजिक एंड आरती मुखर्जीज वॉइस। शी साउंडेड वेरी डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन। 1979 में आई थी ये फिल्म एंड यू नो आई गेस कहते हैं ना कि जैसे एक्टर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स होते हैं या डायरेक्टर्स एक्ट्रेसेस होती हैं, मतलब जो डायरेक्टर चाहते हैं वो उसी तरह घुल जाते हैं, वैसे ही आई थिंक जो सिंगर्स हैं वो जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं वो भी अपने जो सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ एक डिफरेंट वे में निकलवा सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक समटाइम्स वी फाइंड डिफरेंट voices actually you know like in the sense that same person singing but the voice sounds so different so that's how it is and this one of course was going out to our yes Siddharth main gana dhoondne ki koshish kar rahi hu lamhe film ka and mujhe mil nahi raha ha ab mil gaya सो फ्रेंड्स स्विंग्स की बात हो रही है और वाटरफॉल्स की बात हो रही है। लम्हे फिल्म में ये बड़ा ही प्यारा गाना है लता जी की आवाज़ में और ये गाना सुरभि ने हमें दिया है। सुरभि थैंक्स सो मच। एंड इस गाने में है स्विंग फ्रेंड्स, लम्हे फिल्म का गाना, लता जी एंड ईला अरुण है आई थिंक इस गाने में एंड हियर इज द सिलेक्शन। लता जी साउंडिंग अमेजिंग एज ऑलवेज। हियर इट इज गोइंग आउट टू सुरभि।

0: मैंने कहा कि बिफोर वक्त बीता जाए देख जो गाना है जरूर चलना चाहिए, और गाना लिया गया था ऑफ कोर्स फ्रॉम द फिल्म सिलसिला. एज यू नो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल सिलेक्शन हैज अ स्विंग इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स गाना फिल्माया गया था शशि कपूर पर और जया भादरी पर. वक्त आ गया है एक ब्रेक का, एंड वी आर इन अ लास्ट आवर ऑफ झनकार, एंड अ क्विज इज कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट. ब्यूटीफुल सिलेक्शन पिक्चराइज्ड विद अ स्विंग और अ वॉटरफॉल, दैट्स द थीम फॉर टुडे फ्रेंड्स. एंड आई वुड लाइक टू से हाई टू रीटा हु इज जस्ट जॉइनिंग अस, वेलकम टू द शो. एंड ऑल्सो ट्यूनिंग इन इज सुधाकर जी ऑल द वे फ्रॉम रायपुर, तो आपका भी स्वागत है. तो बस छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं. मिस्टर राव वनामाला जी, हेलो टू यू ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर. विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू प्ले योर सिलेक्शन टुडे. आई नो आई हैव टू मेक इट अप टू यू बिग टाइम, बट फॉर नाउ एन एड ब्रेक.
1: You're listening to Easy 96.
2: What are you going to do with your old car? You can try selling it, you could junk it, or you can donate it to Heritage for the Blind. Your car will be towed away for free, and your donation is tax deductible. Just call 1-800-639-8620. Heritage for the Blind accepts cars, vans, trucks, and boats. It doesn't matter if your vehicle runs or not, it'll be towed away for free, and you'll be supporting those that need help. Heritage for the Blind is a non-profit organization that helps the visually impaired live fuller lives. Call right now to donate your car. And as a special thank you for calling, you'll receive a free 3-day vacation voucher to many exciting locations. Call Heritage for the Blind right now. Call 1-800-639-8620. Donating is easy, and your vehicle is towed away for free. Plus, you'll get a free vacation voucher. Call now, 1-800-639-8620. That's 1-800-639-8620.
0: And back with you, friends. Welcome once again to Easy 96 Radio. Let's move on, get back to music, and our very first song going out to Fatima Ji, who joins us from Elmhurst. And she has given us a selection from the film House Number 44. तो चलिए, हमारे घर का नंबर क्या है? तो आप लोगों से हम एक सवाल तो जरूर करेंगे बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. ये लता जी की ही आवाज में है. आप हमें ये बताइए कि विच इज द फर्स्ट सेंस टू बी फुली डेवलप. जब बच्चा पैदा होता है उसकी फर्स्ट सेंस कौन सी पूरी डेवलप होती है सबसे फास्ट? टेस्ट, स्मेल, साइट या हियरिंग? बताइए विच इज द फर्स्ट सेंस टू बी फुली डेवलप्ड. इज इट टेस्ट? इज इट स्मेल? इज इट साइट? और इज इट हियरिंग? दैट्स द क्वेश्चन. एंड हियर इज आवर सॉन्ग गोइंग आउट टू फातिमा जी.

सो जी हाँ, हाउस नंबर 44 फिल्म से लिया गया था ये गाना और जा रहा था हमारी प्यारी सी फातिमा जी के लिए। एंड फ्रेंड्स, सवाल जो अभी उठा है वो है कि विच इज द फर्स्ट सेंस दैट इज फुली डेवलप्ड, टेस्ट, स्मेल, साइट या हियरिंग। सबसे पहले कौन सी सेंस डेवलप होती है? टेस्ट होता है बच्चे का, स्मेल होती है बच्चे की, साइट होती है या हियरिंग होती है, बताइए। इन द मीन टाइम हम आपके लिए नेक्स्ट गाना लगाते हैं और ये गाना एज अ थैंक यू जा रहा है शर्वरी को, उनकी फेवरेट फिल्म, वन ऑफ हर फेवरेट फिल्म्स, एक दिल सौ अफसाने से। लता जी की मीठी मीठी आवाज में ये प्यारा प्यारा सा गाना कहती हैं, आई लव द झूला सो मच, बैक होम वी हैड थ्री स्टोरी होम एंड ईच फ्लोर हैड अ झूला एंड दैट वॉज माई स्पेशल प्लेस, स्पेंड सो मच टाइम ऑन इट, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग, सेइंग प्रेयर्स ईच नाइट विद माई सिस्टर। सो झूला डेफिनेटली ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज फॉर शर्वरी। सो थैंक्स शर्वरी फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन, आपने दो चॉइसेस दी हैं। आई हैपन टू लव दिस पर्टिकुलर सॉन्ग दैट यू हैव गिवन अस, इसके लिए थैंक्स एंड लेट मी गो अहेड प्ले इट फॉर यू राइट नाउ। एक दिल, जी हाँ, और 100 अफसाने।

सो फ्रेंड्स, एक नहीं दो दो लिसनर्स के लिए था ये गाना. हमारी प्यारी सी पूनम जी एंड ऑल्सो मोक्षा हैज रिक्वेस्टेड द सेम सॉन्ग. सो थैंक यू फॉर दिस चॉइस. एंड बढ़ते हुए आगे, हमारा नेक्स्ट गाना भी दो दो लिसनर्स के लिए जा रहा है फिर. एंड दिस टाइम इट इज ऑल अबाउट द जेंटलमैन हिमांशु हु लिसन्स टू अस फ्रॉम अटलांटा. And also Javed Saab in Atlanta both have requested the same song. So let's play it for them. Shabab film se hamara ye next gana in dono ke liye.

From the film Shabab, friends, this selection was going out to Himanshu and also going out specially for Javed Saab. तो चलिए इसी बात पे मिस्टर देव को हेलो बोलते हैं. सुन रहे हैं हमें मिस्टर देव इन सिंगापुर. सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट सिलेक्शन विच इज गोइंग आउट टू सुधाकर जी. सुधाकर जी, आपने हमारा फेवरेट गाना रिक्वेस्ट किया है. सो लेट मी गो अहेड एंड प्ले दिस सिलेक्शन एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस चॉइस. वंस अगेन फ्रेंड्स, लता जी बट दिस टाइम विद रफी साहब सिंगिंग दिस लवली सॉन्ग. हियर इट इज फॉर मिस्टर सुधाकर.

सो फ्रेंड्स, मैं चुप रहूंगी का ये गाना जा रहा था स्पेशली फॉर मिस्टर सुधाकर इन रायपुर इंडिया. थैंक यू फॉर दिस चॉइस, वन ऑफ आवर फेवरेट्स, एंड आपने बहुत दिलों को खुश किया होगा आज इस गाने से. सो फ्रेंड्स, पूछ रहे हैं हम आपसे कि आउट ऑफ ऑल द सेंसेस कौन सी सेंस पहले डेवलप होती है. Out of all the senses, is it the hearing, is it the smelling, is it the touch, which of the five senses that we have is developed fully, or rather first developed I should say, which is the first sense to be fully developed. ये पूछ रहे हैं हम आपसे, तो बताइएगा आंसर हमें. आहिस्ता आहिस्ता आंसर्स आ रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर यू आर थिंकिंग कि कौन सी एक ऐसी सेंस है जो फुली डेवलप होती है सबसे पहले. ये हमारा सवाल है, तो आंसर बताएंगे बहुत जल्द. सो वक्त थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा सा स्पीड अप हो जाइए. इन द मीन टाइम हम संगीता जी के लिए गाना लगाते हैं नेक्स्ट, और ये जा रहा है उनके लिए फ्रॉम द फिल्म उसने कहा था.

आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज में फ्रेंड्स ये गाना जा रहा था हमारी प्यारी सी योगनी के लिए न्यू जर्सी। एंड जी हाँ, हम आपको याद दिला रहे हैं, लास्ट चांस है आपकी, हमें बताइए कि विच इज द फर्स्ट सेंस टू डेवलप फुली इन अ चाइल्ड। चिल्ड्रन में, बच्चों में फर्स्ट सेंस कौन सी फुली डेवलप होती है? स्मेल, साइट, हियरिंग, टच और टेस्ट। आउट ऑफ ऑल द फाइव सेंसेस, विच इज द फर्स्ट सेंस टू डेवलप इन अ चाइल्ड? सो दैट इज द क्वेश्चन। एंड इस गाने के बाद, हमारे नेक्स्ट गाने के बाद हम आपको आंसर बताएंगे। तो दिस इज इट फ्रेंड्स अभी के लिए। नेक्स्ट गाना हम बैंगलोर भेजते हैं, जहाँ मिस्टर राव एंड वनामाला हमें सुन रहे हैं, और आपके पास है 5 मिनट 8 सेकेंड हमें जवाब देने के लिए। Here it is for you, Mr. Rao and Vanamala.

0: खैर।
1: मिस्टर राव एंड वनामाला, थैंक यू सो मच फॉर दिस चॉइस टेकन फ्रॉम द फिल्म लाड साहिब। जी हाँ, बहुत ही प्यारा स्वीट सा गाना आशा जी एंड रफी साहब की आवाज में बहुत दिनों के बाद चलाया, थैंक्स टू यू। सो फ्रेंड्स, बारी आ गई है आपको आंसर देने की। क्वेश्चन था, विच इज द फर्स्ट सेंस टू बी फुली डेवलप्ड इन अ चाइल्ड, एंड लेट मी गिव यू द आंसर्स। शर्वरी सेड हियरिंग, सपना सेड हियरिंग, सिद्धार्थ सेड टच, फातिमा जी सेड स्मेल, मिस्टर देव सेड साइट, मीना पटेल जी सेड टच, टीना जी सेड हियरिंग एंड सुरभि सेड टच। वेल, हियरिंग एंड टच आर राइट ऑन द टॉप एंड द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इज, ये आंसर मुझे लगता है सारों को पता होना चाहिए था, क्योंकि हम कहते ही हैं जब पेट में बच्चा होता है तो उसको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने सुनाने चाहिए। तो हैविंग कीपिंग दैट इन माइंड, यू नो कौन सी सेंस डेवलप होनी चाहिए सबसे पहले? हियरिंग इज अ करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, एंड बेबीज एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग दिस सेंस इन द वूम इटसेल्फ ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, एंड द रिसर्च सजेस्ट दैट दे कैन हियर द मदर्स हार्ट बीट, पिक अप सम आउटसाइड साउंड्स इंक्लूडिंग वॉइसेस एंड म्यूजिक। इसलिए कहते हैं कि वो नेचर वाला काइंड ऑफ म्यूजिक, बड़ा सूथिंग सा म्यूजिक सुनाना चाहिए, या यू नो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट सो दैट द चाइल्ड कैन लिसन टू इट ऑल्सो, सो थिंग्स लाइक दैट, यू नो। एंड कई लोग आई रिमेम्बर हमारे लिसनर्स एक्सप्रेस करते थे कि वो जिनके फेवरेट सिंगर्स होते थे, जैसे किशोरदा किसी का फेवरेट है तो वो सारा टाइम किशोरदा सुनते थे कि बच्चा भी किशोरदा सुने, या रफी साहब, आई रिमेम्बर वन ऑफ आर लिसनर्स एक्सप्रेस दैट शी यूज टू लिसन टू रफी साहब सॉन्ग्स ऑल द टाइम एंड वॉज होपिंग दैट वेन द चाइल्ड एक्चुअली कम्स आउट एंड ग्रोज अप, यू नो ही हैज अ वॉइस लाइक रफी साहब। So hearing is the correct answer friends, the first sense to develop fully in children, so that is the answer. And here is our next request, which is going out to Sapna in Kansas, and she has requested a song from the film Aaye Din Bahar Ke, to chaliye sunte hain saath mein. Right now it is Lata ji and Mahendra Kapoor saab.

सो देयर यू हैव इट फ्रेंड्स, हमारा लास्ट गाने का वक्त आ गया है और ये जो हमने अभी अभी सुना ये जा रहा है सपना के लिए. सपना, थैंक्स सो मच फॉर दिस चॉइस आए दिन बहार के. सो चलिए हम आपसे अब इजाजत लेते हैं और वादा करते हैं कि हम कल फिर आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप कहीं नहीं जाइए क्योंकि म्यूजिक कंटिन्यूज हियर ऑन इजी 96. सो फ्रेंड्स हैव अ टेरिफिक डे एंड आवर लास्ट सिलेक्शन फ्रेंड्स फॉर टुडे इज गोइंग आउट टू अंजलि हु जॉइंस अस from New York. So for her, our last selection and Sanjana signing off with this song and the voice of Lata ji. Have a terrific day.

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

वेलकम फ्रेंड्स टू इजी 96 रेडियो. यू आर जॉइनिंग संजना ऑन द शो झनकार. चाहे वो आपकी चॉइस का हो या हमारी जहन में हमेशा होता है कि हम आपकी चॉइस को कंसिडर करते हुए आपके जो चॉइस के गाने होते हैं, लाइकिंग के गाने होते हैं, जिस तरह के गाने आप सुनना चाहते हैं, उस सब को हम माइंड में रखते हैं जब हम वैसे भी गाने चलाते हैं, जब रिक्वेस्ट शोज नहीं होते हैं. सो होपफुली वी आर अचीविंग दैट इवन इन दैट केस. वेल फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द शो विद म्यूजिक इन

And yes, hoping that by the end of the show, there'll be a few smiles running across the globe with, of course, songs that'll be played of your choice. And as always, कोशिश हमारी पूरी होती है कि हम सबकी रिक्वेस्ट चलाएं, बस वक्त हमारे साथ आगे चले जाता है, कुछ ज़्यादा ही आगे दौड़ जाता है फॉर दैट मैटर. सो बहुत शुक्रिया. वेलकम टू झनकार.

this song from द फिल्म बाजार. सो आई एम गोना प्ले दैट फॉर हर. एंड ये गाना मैंने काफ़ी दिनों से नहीं चलाया एक्चुअली. इट इज़ इन द वॉइस ऑफ नन अदर देन लता जी, एंड वुड लाइक टू डेडिकेट इट स्पेशली फॉर आवर वेरी ओन परमजीत इन ओहायो.

वेल फ्रेंड्स, लता जीज अमेजिंग मेजमराइजिंग वॉइस श्योरली मेजमराइज्ड अल्पना. शी लव्स द सॉन्ग वेरी मच एंड इन फैक्ट द सॉन्ग दैट शी हरसेल्फ इज रिक्वेस्टेड इज आल्सो रियली रियली मेलोडियस. वेल फ्रेंड्स, अलोंग विद अल्पना आई वांट टू से हाय टू फातिमा जी लिसनिंग टू अस इन एल्मस्ट एंड आल्सो जॉइनिंग अस इज शर्वरी फ्रॉम इंडियाना. वेलकम टू द शो शर्वरी एंड आल्सो ग्रीटिंग्स गोइंग आउट टू रोमी हु इज लिसनिंग टू अस इन वेस्टचेस्टर.

जी हाँ, गम का खजाना आपका भी है और थोड़ा हमारा भी है, क्योंकि हम सारे इसी गम में एक दूसरे की बहुत एक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। वी कम हियर ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म टू गेट अ ब्रीदर, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर म्यूज़िक लवर्स, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू, एज यू नो म्यूज़िक इज़ वॉट यू सम ऑफ यू ब्रीथ, म्यूज़िक इज़ सम हु एक्सप्रेस टू अस दैट म्यूज़िक इज़ लाइक ऑक्सीजन टू दैम। सो वॉट बेटर वे टू लिव देन ऑफ कोर्स इन द कंपनी ऑफ म्यूजिक हेयर ऑन ईजी 96। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग इट ईजी फ्रेंड्स, एंड येस रोमी, यू आर वेरी मच इन लॉन्ग आइलैंड, बट इफ आई एम मेकिंग यू ट्रैवल फॉर फ्री विदाउट एनी टिकट, विदाउट एनी चार्ज, एनी टोल मनी, एनी गैस मनी, देन वॉट्स द प्रॉब्लम? आई एम ऑन माई सेकेंड कप बाय द वे, बट थैंक यू सो मच, यू आर डेफिनेटली इन लॉन्ग आइलैंड फ्रेंड्स। रोमी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो ट्यूनिंग इन ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा इज किटी। किटी इज लिसनिंग टू अस, एंड शी हैज़ ऑल्सो एक्चुअली रिक्वेस्टेड वेरी नाइस सिलेक्शन। आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट टू प्ले दिस, बट देखते हैं अगर मुझे ये गाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट कोशिश ज़रूर करूँगी केटी। अदरवाइज इट्स ऑलवेज ग्रेट टू गिव टू चॉइसेस, दिस वे इफ आई डोंट फाइंड वन आई कैन ऑलवेज लुक फॉर द अदर वन। तो चलिए फ्रेंड्स, अनदर सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट आई है अल्पना ने दी थी मुझे अर्लियर, सो वी आर गोइंग टू प्ले दैट नेक्स्ट फॉर हर, एंड शी हैज़ गिवन अस दिस सिलेक्शन इन द वॉइस ऑफ लता जी एंड रफ़ी साहब। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी, मिल गया, हाँ लता जी एंड रफ़ी साहब की आवाज़ में इन्होंने ये गाना दिया है। अल्पना, थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग इट, इट इज़ एक्चुअली अ फेवरेट ऑफ आवर लिसनर्स एंड इज़ रिक्वेस्टेड मैनी मैनी टाइम्स, एंड टुडे आई वुड लव टू प्ले इट फॉर यू राइट नाउ। हियर इट इज़ गोइंग आउट टू यू इन न्यू जर्सी।

Well, friends, heard it after a long time from the film Manzil Manzil. You just heard the voices of Asha Ji and Shailendra Singh going out to Javed Saab in Atlanta, Georgia. Well, Javed Saab, must say a very refreshing change in your requests. A good one. Thank you so much for it. वैसे तो आप हमेशा ही अच्छे गाने देते हैं, but आज थोड़ा different दिया तो अच्छा लगा. And friends, as we move on to an ad break, let me first say hi to Vinaya, who's joining us from कहाँ से, फ्रॉम फिली. आइरीन इज ऑल्सो जॉइनिंग अस, लिसनिंग टू अस इन ओहायो. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एज वेल. एंड आई ऑल्सो वांट टू से हाई टू विजय जी, हु इज लिसनिंग टू अस इन न्यूयॉर्क सिटी. तो चलिए हम आज की थीम बताते हैं. थैंक्स टू संगीता जी, हु लिसन्स टू अस इन लॉन्ग आइलैंड. आई वुड लाइक टू फर्स्ट से थैंक्स टू हर फॉर गिविंग मी कपल ऑफ आइडियाज, एंड सम ऑफ देम आर रियली रियली ग्रेट. एंड किटी, थैंक्स फॉर योर थीम एज वेल. बट आज की जो थीम है, इट्स ऑल अबाउट संगीता जी. वी हैव डन इट इन द पास्ट, बट देयर वर सो many songs I remember we could not play, so we are going to play it. We're going to do this theme once again, and I believe it was Moksha who had requested this theme before a few months back. But today Sangeeta ji, she says songs that are inviting, matlab gaane jisme koi kisi ko bula raha hai, pukar raha hai, keh raha hai ki bas aa jao. You know, so inviting songs जो होते हैं ना, वो वाले गाने, चाहे solo हो या for that matter you know, do its own, as long as they are inviting songs. So that's what we are going to do. Thanks to Sangeeta ji today, appreciate it for today's theme. And friends, time for a break, some messages from our sponsors, and after these messages we will be back and we'll bring you one more segment of your choice here on Easy 96.

सो सुहाना सफ़र तो होता है हमेशा जब हम यहाँ पर आपके साथ वक्त स्पेंड करते हैं, चाहे आउटडोर सुहाना हो या ना हो, इंडोर ज़रूर वो वेदर बन जाता है। कैसे, कब, क्यों, ये नहीं पता, बट हमें ये ज़रूर पता है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। यस फ्रेंड्स, दिस अमेजिंग सिलेक्शन ऑफ कोर्स गोइंग आउट टू आवर वेरी ओन फातिमा जी लिसनिंग टू अस इन एल्मस्ट। अभी के लिए मोक्षा की रिक्वेस्ट चलाते हैं फ्रेंड्स, एंड दिस अमेजिंग सिलेक्शन is going out from the film Milan, Lata ji and Mukesh saab ki awaaz mein. So let's go ahead and play it for Moksha joining us from Jersey.

So friends, this song of course taken from the film Milan. The year was 1967 and Lata Ji and Mukesh Saab ki awaaz mein, the music of Lakshmikant and Pyare Lal, lyrics of Anand Bakshi Saab. Before I move on to the next request, I want to say hi to Didar joining us from Canada, and also tuning in is Jaydev from Philly. Ajay Ji is listening to us. Varsha is joining us from Ohio. Parvati is joining us from Wayne, New Jersey. Welcome to the show. Kapil Gargi Ji listening to us in Queens. Shaila Ji listening to us in Queens as well, and Poonam Ji joining us from Jersey. आप सबका स्वागत है हमारे स्टेशन पर. भाविका जी आपका भी स्वागत है हमारे स्टेशन पर. तो हम आपको बताते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो गाना है वो कौन सा है. बाय द वे इट्स गोइंग आउट टू शर्वरी हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इंडियाना. शी हैज़ रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म संतान. गोइंग बैक टू द ईयर 1959 फ्रेंड्स, दिस नेक्स्ट सिलेक्शन गोइंग आउट टू शर्वरी राइट नाउ. आर जनरल सेगमेंट इज ऑन. वेरी सून वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर थीम प्रोग्राम. थैंक्स टू संगीता जी.

वेल फ्रेंड्स, ये जो गाना था लिया गया था फ्रॉम द फिल्म गोलमाल, एंड नथिंग गोलमाल अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. गाना ही कुछ ऐसा है जो बहुत बहुत खूबसूरत है. सो थैंक यू सो मच. एंड हमारी जयश्री इज ऑल्सो थैंकिंग वनाया फॉर रिक्वेस्टिंग दिस इनक्रेडिबल सॉन्ग. सो किशोरदा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बड़ी गंभीर आवाज़ में ये गाना जो हमारे दिल को और हमारी सोल को बिल्कुल टच करता है. तो फ्रेंड्स, चलिए ब्रेक हो जाए. ब्रेक लेती हूँ. व्हेन वी कम बैक वील स्टार्ट आवर थीम प्रोग्राम सॉन्ग्स दैट आर इनवाइटिंग फ्रेंड्स इन नेचर. यस, आ जा, आओ, बुलाना, पुकारना, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? सोचिए और गाना भेजिए. हम बस थोड़ी सी देर में आते हैं वापस.

वेल फ्रेंड्स, ये तो बड़ी अच्छी तरह अपने सपनों की रानी को बुला रहे हैं। तो कोई अपने सपने के राजा को आज बुला रहा है कि नहीं बुला रहा, ये है क्वेश्चन आज के लिए। गाने तो ये सारे ही बहुत प्यारे हैं एंड आई नो मेनी ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग सम ग्रेट सिलेक्शंस एज यूजुअल। सो पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर दैट। एंड यस फ्रेंड्स, बिफोर आई मूव ऑन, आई वुड लाइक टू वेलकम अ फ्यू ऑफ यू हु आर जॉइनिंग अस राइट नाउ, इंक्लूडिंग मिस्टर हसन लिसनिंग टू अस इन मैनहट्टन, एंड ऑल्सो ग्रीटिंग्स वंस अगेन गोइंग आउट स्पेशली फॉर लीला इन द ब्रॉन्क्स, एंड हेतल इज जॉइनिंग अस राइट नाउ, शी इज ऑल्सो ट्यून्ड इन। थैंक यू हेतल, आई लव दैट सॉन्ग दैट यू हैव रिक्वेस्टेड, लुकिंग forward to playing it for you as well. And also joining us friends is Meena Patel ji from New Jersey. Welcome to the show. Greetings going out to you as well. To chaliye, moving on to our next request, going out specially for none other than Varsha. Varsha is listening to us in Ohio and she has requested another song which is one of a kind. Ji haan. वैसे हमारी पूरी लाइफ टाइम में, वैसे अभी पूरी तो हुई नहीं है, अभी भी जारी है, बट हाँ अभी तक जो एक्सपीरियंस है, वैसे हम वी ऑल नो दैट कि फॉर सम रीज़न और दी अदर वी ऑलवेज आर यू नो मिसिंग समवन और समवन और दी अदर इज़ इन डेफिनेटली ऑन माइंड, एंड वी वांट देम टू बी नियर अस, वी वांट देम टू कम एंड विजिट अस। सो किसी ना किसी को तो हम बेसिकली पुकारते रहते ही हैं, तो दिल से पुकारते हैं तो कभी कभी मन्नत पूरी हो जाती है, अगर ऐसी वैसी पुकारते हैं तो फिर नहीं पता। तो चलिए, वर्षा तो दिल से पुकार रही है और वो भी फ्रॉम द फिल्म जुअल थीफ। जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं ये गाना जो जा रहा है वर्षा के लिए, हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम ओहायो।